खून खार शराबी हाथियां नाल लड़न दी समर्था रखन लगे। ये शक्ति सारी खंडे बाटे दे अमृत दी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह

गिद्धड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक एक सिंह ने

लड़न दी समर्था रखन लग पे। ए गुरु जी ने मौजजा दिखाया, करिश्मा दिखाया कि खंडे बाटे दी पहल दे के ऐसी रूह फूक दिती कि मौत दा कोई डर नहीं, किसे जरवाने दा कोई डर।

जे कोई मुसलमान नहीं बनदा उसनू मौत दे घाट उतार दी। ए दुखी होए सहायता लैण वास्ते आए, बेनती करन आए ने कि साडी रक्षा करो।

सिर तां कटवा दिता पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पहुंच सकिया। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना

नमो श्री प्रभति बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भग

द्वय सुभतः सोहि सुभतः सोहि नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोख दाती अपंगी फिरे शाम है मोख

खंड खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग तुपक तवर अर्पे अस्कृपान खंडो खड़ग तुपक तवर अर्पे सैप सरोही सैरी यही हमारे सैप सरोही सैरी यही हमारे तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार

0: भाई नंदलाल जी
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त
1: हमेशा जिंदा अस्त तालबे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तलकाल नसे हर सर धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत पराप्त।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पुलाल पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया, लंक

0: देखो खालसा की फतेह। चार सूट के अंदर
1: रूम ना पत बजा शाम मोहरा चला। सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज।
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब के वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब।
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज।
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं।
0: चार वर्ण एक वर्ण करा वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं।
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को तुर्क।

इस खालसे को पुरत जाएंगे भाई, देख खालसे को पुरत जाएंगे झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत धुके सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदे

तय हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यों चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछणा छड़िया बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास त्रोई आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे।

सिर छार उड़ावे। तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी।

परमेश्वर आप होवा रखवाला, परमेश्वर आप होवा रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

ई पावन पवित्र शब्द। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे मुखार बिंद तो उच्चारण कीता है। जिस शब्द अंदर जीव प्राणी मात्र नु सतगुरु जी उपदेश देंदे ने और ए गल समझा रहे ने, हे प्राणा वाले प्राणी मनुख, एक नाम नु त्या, एक नाम नु याद कर, क्योंकि ए नाम ही तेरे नाल जाना है। सो साध संगत, धन गुरु नानक पातशाह दी इस पावन पवित्र शब्द अंदर सानू कलजुगी जीवां नू प्रेरणा देनी बड़ा सुंदर ख्याल करके आओ आपा इस शब्द नू मन विच वसाईए, हिरदे विच इस तरह धारण करिए जिवें सतगुरु समझा रहे ने।

सतगुरु ने एक नाम की प्रेरणा दिती, एक नाम बारे ही समझाया है। आओ सतगुरु गुरु नानक पातशाह का जड़ा पछोकड़ तकीए। साहब श्री गुरु नानक पातशाह उस बार दे इलाके दे रहण वाले ने, जिस बार दे इलाके विच एक बड़ा सुंदर ग्राम, बड़ा सुंदर नगर है, जिसका नाम है तलवंडी। इस तलवंडी दे विच रहण वाले शिवराम बेदी जी होए ने, उन्हां दे दो पुत्र मेहता कालू जी ते उन्हां दे छोटे भाई लालू जी। कहिंदे ने मेहता कालू जी दे ग्रह ते माता तृप्ता दी कुखो, शीश नौ ते प्यार नाल आखो धन गुरु नानक। गुरु नानक साहिब ने आगमन लिया। जिस वेले आगमन होया ते मेहता कालू जी पंडित हरदयाल दे घर गए, जाके खबर दिती कि मेहता कालू जी दे घर सत संगत पुत्र दी दात होई है। हुण इन्हां दे ग्रह विखे केवल एक पुत्री सी जिदा नाम इतिहास विच नानकी आया है। हुण जिस वेले जाके मेहता कालू जी पंडित हरदयाल नूं दसदे ने कि तुसी मेरे घर आओ ते मेरे घर आके मेरे पुत्र दा नाम रखो, ते कहिंदे ने दिन चढ़िया, पंडित हरदयाल जी मेहता कालू जी दे घर आए ते घर आके कहन लगे, मेहता कालू जी तुसा मैनू याद कीता है अपने पुत्र दा नाम रखण लई, पर पहला इंज करो, उस दाई नू बुलाओ जिसने अज इस बालक नू जन्म दवाया। कहिंदे ने दाई दौलता नू बुलाया गया, पुछ कीती दौलता जिस वेले बालक दा जन्म होया है तू की महसूस कीता है, तेनू किवें लगे है? दाई दौलता कहन लगी, पंडित जी मेरे इन्हां हत्थां दे विच इसे नगर विच अनेकां बच्चे होए ने, पर मैं ऐसा बालक नहीं वेख्या, मैं ऐसा बालक नहीं तकिया। पंडित हरदयाल जी कहन लगे, दौलता तू कहना की चाहती है? तू केवल इतना दस के बालक ने जन्म लैन लग्या मुख तो पहला बचन की आख्या? कहन लगी, मैं ते इतना कुछ कह सकती हां कि मेरे इन्हां हत्थां विच बालक बतेरे होए ने, पर मैं जिहड़ा भी बालक वेख्या रोंदा तकिया, पर ए बालक जिस वेले होया उस वेले हस रहा सी, इहदे चेहरे ते मुस्कुराहट सी, इहदे चेहरे दा नूर वेख के हैरान होई, ते मैं ए देख रही सा जिस वेले बालक ने जन्म लिया उस सारे घर दे अंदर चानण ही चानण हो गया, इतना प्रकाश मैं जिंदगी विच नहीं देखिया। जिस वेले पंडित हरदयाल जी ने यह बचन सुने ते मुखों स्वाभाविक गल निकल गई, मेहता कालू जी तुसी वड्डियां भागां वाले हो, तुहाडे ग्रह विखे किसे अवतार ने जन्म लिया है, तुहाडे ग्रह विखे कोई अवतारी पुरश आया है, हाले मैं बालक नूं तकिया नहीं, दौलतां दे मुंहों सुन के मैं केवल इन्ने लफज कह सकदा हां, पर मैनूं बालक दे दर्शन तां कराओ जिदा मैं नाम रखणा है। साध संगत दौलतां नूं मेहता कालू जी ने हुक्म कीता, जाओ बालक नूं बाहर लैके आओ, पंडित हरदयाल जी देखना चाहते ने। जिस वेले पंडित हरदयाल जी ने साहिबां नूं बाहर आंदियां तकिया, बस वेखदियां सार मन चुक गया। कहिंदे ने पंडित हरदयाल ने उठ के साहिबां नूं नमस्कार कीती, इतना सत्कार दिता ते वेखदियां सार कहन लगा, मेहता कालू मैं वेख रहा इन्हां दे चिन्ह चक्कर इन्हां दे मस्तक तो इस तरह जापदा है ए जिवें कोई बहुत वड्डे महापुरख हन, ते कोई समा आवेगा इन्हां दे सिर ते छत्र चुलणगे, ये कोई छत्रपति बहुत वड्डे राजे होणगे,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਰੇਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚਿੰਨ ਚੱਕਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਆਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਖਿਚਾਓ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਐਸਾ ਵੀਰ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੂਜੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਇਤਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇਣ

उस पार ब्रह्म तो बिना किसे होर दूजे नू नहीं जानना, केवल एक नू मनना है। ते साध संगत, इतिहास विचो एक झलक बड़ी सुंदर चेते आई है तुहाडी चोली पावा। गुरु नानक पातशाह जिस वेले पीर दस्तगीर सवाल करदा है गढ़ बगदाद दी धरती अंदर, कहने गुरु नानक पातशाह तुसी एक दा पैगाम लैके आयो, बार बार एक दा जिक्र कर दियो, दसो दे सही एक है कौन? साहब कहने ने एक है अकाल पुरख। कहन लगे महाराज एक अकाल पुरख जिदे सिमरन दी तुसी प्रेरणा दे रहे हो कि तुसी ए दस सकदे हो कि उस अकाल पुरख तो पहले कौन सी, उस तो पहले कौन सी? जिस वेले ए सवाल होया तां गुरु नानक पातशाह कहन लगे पीर जी इंज करो तुसी थोड़े जे मोती मंगवा लो। जिस वेले इस बचन नूं दुहराया पीर जी मोती मंगवाओ असीं तुहानूं हुणे दस दिंदे आ, ते साध संगत उस वेले पीर ने अपने मुरीद नूं हुक्म कीता जाओ भाई मोती लै के आओ। शिश मुरीद मोतियां दा थाल भर लिया, सतगुरु गुरु नानक पातशाह अगे टका दिता, लो पातशाह मोती हाजिर हन। सतगुरु कहन लगे पीर जी ये मैनू नहीं चाहिए, मैं तुहाडे लई मंगवाए। कहन लगे महाराज मेरे लिए? कहन लगे हां ये आप दे वास्ते ने हुक्म। पीर जी इन्हां मोतियां दी गिनती आरंभ करो, इन्हां नूं गिनना शुरू करो। हुण जिस वेले दस्तगीर पीर ने मोती हाथ विच लै ते गिनती नूं आरंभ कीता, आख्या एक दो तीन, सतगुरु जी ने टोकता। साहब कहन लगे पीर जी गिनती सही नहीं है, फिर दोबारा गिन। हुण पीर बड़ा हैरान होए, पीर कहन लगा महाराज जिवें आप दा हुक्म, गिनती फिर आरंभ करदा हां। पीर जी ने गिनती फिर आरंभ की, आख्या एक दो, सतगुरु ने फिर रोक दिता, पीर जी गिनती अजे भी सही नहीं। हुण दस्तगीर पीर हैरान होया ते कहन लगा पातशाह उम्र वडेरी हो गई, हो सकदा जबान लड़ खड़ा गई होवे, आप दे सामने मैं कहण जोगा भी कुछ नहीं, जिवें तुसी हुक्म कर दियो गिनती फिर गिन लैना। हुण पीर बड़ा चौतन होया, कहन लगा साहिबा ने दो वार रोके है, तीसरी बार रोकण दा मौका नहीं देना, गिनती सही गिननी है। जिस वेले पीर ने आख्या एक, सतगुरु जी ने उत्थे ही हाथ फड़ लिया, पीर जी गिनती अजे भी सही नहीं है। हुण पीर बड़ा हैरान होया कि गिनती तां हुण सही है, सतगुर कह रहे ने गिनती सही नहीं। साहब कहन लगे पीर जी एक तो पहले गिनो। हुण पीर कहिंदा सतगुर एक तो पहले किवें गिना, एक तो पहले अखर ही कोई नहीं, गिनती आरंभ ही एक तो हुंदी है। सतगुर कहन लगे पीर जी तुहाडे सवाल दा जवाब है, तुसा सवाल कीता कि एक तो पहले कौन सी, जिवें गिनती एक तो आरंभ हुंदी है, एक तो पहले कोई नहीं, एवें एक अकाल पुरख है, अकाल पुरख तो पहले कोई, केवल अकाल पुरख है। उस अकाल पुरख दा असा नाम जपना है, उस अकाल पुरख दा असी सिमरन करना है। आओ इस एक आवाज नूं सतगुरु ने कई जगह बुलंद कीता है, धन गुरु अर्जन साहब ने भी इस आवाज नूं बुलंद करदे हुए आखिया।

मेरी चिंता मिट गई है और मां ना मैनू डर आउंदा ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना सारिया थावां ते तू मेरा राखा है जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा मैनू डर किसदा जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेता सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी एक कौन कहेगा खसम वाला मालक वाला गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया वो मान की कर सकदा किसे ते जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा नहीं नहीं कह सकेगा उनू अपनी कमजोरी दा पता है लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औख दिया एका लिवलाई राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मटाई कहो नानक कृपा पई प्रभ पए उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां पर आपां पढ़ लईए जरूर सारी संगत पढ़ियो गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते फोटो ते इवें आएगी ना पता ते इवें लगेगा ना अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह दे हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता आपां वी माण करिए ने सारे तो बोलियो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच हर वधे कंट्रोल विच गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी क्योंकि सत्संग है सचखंड है वैकुंठ है इसी महिमा दा पारावार नहीं जे असीं नहीं सोचांगे ते बेअदब होवांगे सारे पढ़ियो

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार अवगुण कौन चितार गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु नाल

दिन राती आराधा प्यारो निमख ना की जे ढीला। और ए भी गुजरी राग, और गुजरी राग भी तुम्हार है।

ठाकुर अर्जुन पातशाह श्री सुखमणि साहब अंदर कितना उपदेश सुंदर दे रहे। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, कहिंदे ने जिहड़ा प्रभु का सिमरन है सारे नाल उच्चा है, पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ है। सिमरन उच्चा क्यों किया गया? कहिंदे ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, नाउ तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करन वाला नरका दे विच नहीं जांदा, सिमरन करन वाला, ते जिहड़ा सिमरन करदा नरकां दा भागी नहीं बन सकता। इसलिए सिमरन सावे नाल उच्चा किया गया है।

आठ दम को छिपरो होयो लखीना भूलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को बीरा नीत